काबू तेरा कहना काबू तेरे शरिया दिए लुम अलो बना ला का बनुकनी क्या ही मकानी खुले मोनो आ ही मकानी करो आऊ।